0: क्लास तुम कुफा भी
1: सोतू सुखसाने ने रजगले मंदे मंदी तुम्हारे माता का इसके आराम पिछले तम से दिखूं तुम चला रहे म्याना का टीम म्याना का काम रहे टीम म्याना करे अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क के यहाँ को वाह ये जन के जान मंदी तुम्हारे माता का इसके आराम है ये जन के रिस्क सांप वाह ना जब फिक्री जन मु उतन C'est un peu de temps, c'est un peu de temps. Et des rares, il y a des gens qui ont
2: été en train de se faire.
3: Araka ny faniriana hoe te hiteta an'i Madagasikara dia zotony mihitsy izany. Efa ankehirezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo fa tena hoe mankafy tokoa an'ity Nosy Mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahala ity izany e. Dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokana tsika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: बस तुम कुफा भी
1: बमंगा तक आंखों में नंबुमंगा केल संज्ञा बाई चेरों फुकतान नंबुमाइंस पावटन संज्ञा नंबुमाइंस अनोटन समास निनी नमीच अट्रम सोफा अंड्रासों रासलाव टेनिस फिजरा नताने ते प्यान चटे वामनी रोकुल ते उयोन ना कमले ले फोरुन निस फंड्राइसना नारा नंद्राया ते उटन फिटफ्टीन ले प्रेस तो इस मुझांस ते ना प्रेस ना वो टुने कार्टे मोबिल ते फिर पेरां फुट से ले सुरात ना ते ते से सेम बस सुरात प्रेस तो ते सान ना तो ने ने वे अंदो सुरात ना रा वो टो ये वेतना मेनो तुझी सुन ना तो न फुन रखा ये सिस्टी लो इस